नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष युवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष विश्वबहादुर गले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्रे एवं दोर्जी गाउँपालिका परिवार नौथर सेरा लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्ष क्षेत्र बहादुर गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर गुरुङ एवं दुधपोहरी गाउँपालिका परिवार गौडा लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष भीम बहादुर गुरुङ, प्रधान अध्यापक मेन बहादुर घले, ग्लोबल भिजन बोर्डिंग स्कूल परिवार, सुन्दर बजार नगरपालिका 9 लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 98560 46028।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कार्यालय प्रमुख मदन श्रेष्ठ, खानेपानी तथा सरसफाई डिविजन कार्यालय, गोर्खा इकाई परिवार, लमजुङ।

0: शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रबन्धक राम दीक्षित, कृषक जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, विशेष नगरपालिका 8, लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, उपप्रमुख सीता गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला एवं मध्य नेपाल नगरपालिका परिवार भोलेटार लम्जु।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइराला, उप प्रमुख भवानी केसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश कर्ती एवं सुन्दर बजार नगरपालिका परिवार सुन्दर बजार लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष उमर गुरुङ सिउरुङ सामुदायिक होमस्टे परिवार सम्पर्क फोन नम्बर 98412 38033।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्ष कमीमाया गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव प्रसाद वाक्ले एवं कोलासोत्तर गाउँपालिका परिवार मालिङ लमजुङ,

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, उपप्रमुख सीता गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला एवं मध्य नेपाल नगरपालिका परिवार भोलेटार लमजुङ।

0: तिमी त मेरो परान हो नि, तिमी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ र?
1: चिनी भयो नि हामी एक हुन सक्दैनौ। के
0: ल किन के देखेको छ र?

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपाइटर गोविन्द बस्नेत, जयश्री कालिका मिनी क्रसर उद्योग, विशिष्ट नगरपालिका एक लम्सुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष प्रेम घले, सचिव दीर्घ घले, घलेगाउँ सामुदायिक होमस्टे परिवार, सम्पर्क फोन नम्बर 9841 19 30 67।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष नन्दराज तामाङ, प्रधानाध्यापक अर्जुन भण्डारी, हिमचुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय परिवार, मर्स्याङ्गी गाउँपालिका 3, खुदी लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्याल, उप प्रमुख पद्मा गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन अधिकारी एवं बेसी शहर नगरपालिका परिवार बेसी शहर लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङ, कार्यालय प्रमुख विष्णु बहादुर अधिकारी एवं बेसी सहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार, बेसी सहर नगरपालिका 8, लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष युवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष विश्वबहादुर गले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्ले एवं दोर्जी गाउँपालिका परिवार नौथर सेरा लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई दीदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङ, कार्यालय प्रमुख विष्णु बहादुर अधिकारी एवं बेसी शहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार बेसी शहर नगरपालिका 8 लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कार्यालय प्रमुख मीता कुमारी थापा एवं एकीकृत सेवा कार्यालय परिवार बेसीतह नगरपालिका 7 लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्ष क्षेत्र बहादुर गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर गुरुङ एवं दुधपोहरी गाउँपालिका परिवार गौडा लमजुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। कार्यालय प्रमुख उत्सव पोखरेल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विशेषहर लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कार्यालय प्रमुख मदन श्रेष्ठ, खानेपानी तथा सरसफाई डिविजन कार्यालय, गोर्खा इकाई परिवार, लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नगर प्रमुख खड्कबहादुर गुरुङ, उप प्रमुख पुष्पराज खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज रेग्मी एवं राइनस नगरपालिका परिवार तीन पिपे लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष सूर्य प्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्ष कमीमाया गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव प्रसाद वाग्ले एवं कोलासोत्तर गाउँपालिका परिवार मालिङ लमजुङ,

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, उप प्रमुख सीता गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला एवं मध्य नेपाल नगरपालिका परिवार थोलेटार लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालय सम्पर्क फोन नम्बर 9856045258।

0: तिमी त मेरो परान हो नि, तिमी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ र?
1: चिनी भयो नि हामी एक हुन सक्दैनौ के रे?
0: ल किन के रे सेक्छ र?

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष उमर गुरुङ सिउरुङ सामुदायिक होमस्टे परिवार सम्पर्क फोन नम्बर 98412 38033।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, उपप्रमुख सीता गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला एवं मध्य नेपाल नगरपालिका परिवार भोलिटार लम्जु।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर गोविन्द बस्नेत, जयश्री कालिका मिनी क्रसर उद्योग, बेचीसहर नगरपालिका एक लम्सुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। कार्यालय प्रमुख उत्सव पोखरेल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय बेसी शहर लमजुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। भूमिगत जलस्रोत संरक्षण र संवर्धन गरौं, खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरौं, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको मौलिक हक अधिकार हो। कार्यालय प्रमुख उच्चत पोखरेल एवं संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय बेसीसहर नगरपालिका 8 लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष उमर गुरुङ सिउरुङ सामुदायिक होमस्टे परिवार सम्पर्क फोन नम्बर 98412 38033।

0: ओहो जुजु लासो
1: लासो वाले लासो लासो
0: जुजु इस पल तो माला में करोड़े अनुभव क्या
2: माला कालो घर मत वाले मक्का तो 8-10 करोड़े उनसे नहीं
0: ठीक है सर 2-4 करोड़ बाप
3: दीदी हेर्नु न त्यो केटाहरूले त करोडको कुरा गर्दैछ
4: त्यो के अहिलेको केटाहरू 2-4 तोला नार्कोन्स करोडलाई त टुप्पोमा पलाकाहरू

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ओम बहादुर घिमिरे, प्रधानाध्यापक विमल अधिकारी, युनिभर्सल एकेडेमी विद्यालय परिवार, बेसीसह नगरपालिका 7, लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नगर प्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, उपप्रमुख सीता गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला एवं मध्य नेपाल नगरपालिका परिवार भोलेटार लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर गोविन्द बस्नेत, जयश्री कालिका मिनी क्रसर उद्योग, विचितहर नगरपालिका एक लम्सुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई दीदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपाली में सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष देव बहादुर गुरुङ काउलेपानी सामुदायिक होमस्टे परिवार सम्पर्क फोन नम्बर 98462109963।
0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई दीदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपाली में सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कार्यालय प्रमुख उत्सव पोखरेल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय बेसी शहर लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कार्यालय प्रमुख मदन श्रेष्ठ, खानेपानी तथा सरसफाई डिविजन कार्यालय, गोर्खा इकाई परिवार, लमजुङ।

0: துப்பாக்கியில வந்து ஆயுத பாடலும் அவ குனித்தேன் செஞ்சாங்க.
1: के हो यार, दिमाग छैन, के गरेको यस्तो? अलिकति हेरेर गर्नु पर्दैन, काम नलाग्ने केटी को छ यहाँ?
2: हजुर हजुर हजुर सर, के भयो?
1: वैया
2: सरी सर, माफ गर्नु होला, हिजो मात्रै गाउँबाट आएको, एकदमै नयाँ छ, भर्खर काम सिक्दैछ, म तपाईँहरूलाई अर्को टेबल मिलाइदिन्छु नि सर.
0: जाउँ त बसौँ.
2: सरी.

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष प्रेम घले, सचिव दीर्घ घले, घलेगाउ सामुदायिक होमस्टे परिवार, सम्पर्क फोन नम्बर 9841 19 30 67।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: कार्यालय प्रमुख मीता कुमारी थापा एवं एकीकृत सेवा कार्यालय परिवार बेसीतह नगरपालिका 7 लमजुङ।